मुंदा संतोख सरमपत झोली ध्यान की करे विभूत चिंता काल कुवारी काया जुत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाद।

0: ईस्ट एफएम
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं।

चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उद करख करा करतारा प्रजा धरतव देह अपारा जब आ करख करत हो कबहू तुम मैं मृत दे तर सब हूं जेते बदन।

कहूं सिमट पयो शंकर एकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप जंपव अबर अच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेती उठ बत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु तब सरणी।

और समीन, आपने एक सवाल कल के लिए तैयार करना है। सवाल? जी हाँ, आमतौर पे तो सवाल मैं ही करती हूँ, लेकिन आप भी कर सकते हैं, क्योंकि माहिर यानी एक्सपर्ट्स किसी भी फील्ड में आपको एक तजुर्बेकार यानी एक्सपीरियंस, जिसको अनुभव हो और जिसकी जिसका इल्म इतना वसी हो, ऐसे एक्सपर्ट्स बहुत कम मिलते हैं। तो हमें कल के लिए मिल गए हैं एक डॉक्टर साहब, तो हम उनका फ़ायदा उठाएंगे, उनकी नॉलेज का, उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएंगे। कल मंगल है ना, तो मंगलवार 11 बजे ये काम शुरू हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हाँ, वैसे भी आपने उनको सुन रखा है, हमारे प्रोग्राम के बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर भी हैं और पहले भी इनकी इंटरव्यूज़ आपने देखी। इन्होंने ही तो आपका परिचय करवाया था आयुर्वेदा के साथ। तो अब क्योंकि आयुर्वेदा का दिन आ रहा है बुध के दिन, लेकिन आप आएंगे मंगल को, एक दिन पहले आयुर्वेदा की पूरी। तो इंटरव्यू के दौरान समय आपने अगर कोई सवाल पूछना है तो बड़ा अच्छा मौका है। ज़रूरी नहीं कि आप डरें कि मेरा नाम आ जाएगा, डॉक्टर साहब नाराज़ हो जाएंगे। नहीं, आप अपना नाम ही ना रखें, कह दें अनोनिमस, तो फिर हम अनोनिमस की जानिब से वो नहीं, उनको नहीं पता चलेगा कि किसने क्या सवाल किया, वरना मेरे पास काफ़ी सवाल आते हैं तो वो भी पूछेंगे। तो कल याद रखना समय, इंटरव्यू नहीं भूलनी।

0: चलिए देखते हैं कि प्यार अली।
1: प्रवीण जी, क्या मिल गया क्या खो गया, ये गाना फिल्म ससुराल का है, 1961 की मूवी है, जिसको मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने गाया है, जिसको हसन जयपुरी ने लिखा है और जिसकी धुन शंकर जय किशन ने बनाई है। ये मूवी में राजेंद्र कुमार और सरोजा देवी ने काम किया है। गाना अच्छा लगा सुनाने के लिए आपका शुक्रिया।
0: और अब देखते हैं, इनके बाद मंजुला विश्वकर्मा भी आई हुई हैं।
2: ममता का गाना सुनकर बहुत मजा आया, बहुत दिनों बाद सुनाया, बहुत अच्छा गाना, ये वाला गाना मतलब बहुत अच्छा। तू कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो ए जिंदगी, तू कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो ए जिंदगी, खुश मिजाज दोस्तों के बगैर अच्छी नहीं लगती। शुभ प्रभात सबको।
0: क्या बात है मंजुला विश्वकर्मा, खुश मिजाज जो दोस्त है ना, वही जिंदगी को हसीन बनाते हैं। मंजुला विश्वकर्मा, वेरी गुड। चिराग पटेल, हाउ वाज योर वीकेंड? माइन वाज ओके, वाज इन नैरोबी यस्टरडे एट द स्वामी नारायण मंदिर ऑन फॉरेस्ट रोड। जी हाँ, स्वामी नारायण मंदिर बहुत ही खूबसूरत और वेल केप्ट है। हालांकि एक आधा मंदिर मैंने देखा है कि बहुत खूबसूरती से बनाया गया चंद साल पहले, पर आजकल ना तो उसका रंग ठीक रहा है, नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये जो स्वामी नारायण मंदिर ऑन फॉरेस्ट रोड तो बहुत वेल मेंटेन। वॉज अटेंडिंग अ फैमिली रिलीजियस फंक्शन इन द इवनिंग एंड देन बैक होम। चिराग पटेल बहुत अच्छे, वरना चिराग पटेल तमाम हिस्टोरिकल साइट्स विजिट करते हैं। रसिला, होप यू हैड अ गुड वीकेंड, हाउ आर यू, लवली स्टार्ट एट विद द म्यूजिकल जर्नी, थैंक यू, ब्लेसिंग इज लव, ब्लेसिंग इन लव। ओ कहते हैं, लाइफ डजंट से यू फेल्ड, इट सेज रीकैलकुलेटिंग, एवरी रॉन्ग टर्न कैन टीच यू समथिंग, एक्सेप्ट द डिटूर्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड एडजस्ट योर डायरेक्शन, यू हैवंट लॉस्ट योर वे एज लॉन्ग एज यू कीप मूविंग फॉरवर्ड। कहती जिंदगी, कहते जिंदगी आपको बताती है कि कई आपने गलत रास्ते लिए होंगे, लेकिन चलते जाइए। गलत क्या है, गलती तो आपको दिखाता है कि सही क्या है।
3: East FM. East FM.

और एमएल विश्वकर्मा कहते हैं कि आपको पता है कि आने वाले जमाने में ग्रीन गोल्ड क्या होगा? ग्रीन गोल्ड दुनिया में इस्तेमाल होगा. इट इज इट्स यूज विल रिड्यूस प्लास्टिक ओके पोल्यूशन. ग्रीन गोल्ड विल बी मच चीपर ऑप्शन फॉर हार्ड वुड एंड ऑल्सो आयरन स्टील. सो ग्रीन गोल्ड, द ग्रीन गोल्ड इज नॉट टी, इट्स बैम्बू. अच्छा, द क्रॉप कैन बी ग्रोन इजिली एंड रिड्यूस फर्टाइल सॉइल इरोजन. कहते हैं कि लोहे के बजाय, लकड़ी के बजाय हम इस्तेमाल करेंगे बैम्बू को. इट्स द ग्रीन गोल्ड. एम एल विश्वकर्मा वाकई कहते हैं कि आजकल बहुत इनकरेज कर रहे हैं कि आप बैम्बू लगाएं, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं. अमीर अली राना, आज आपको सवाल दे दूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए. जी आप आज नहीं, कल भेज दीजिएगा, मैं पढ़ दूंगी क्योंकि कल सामने होगा पर्दे पर. आप अगर अपना नाम गुप्त रखना चाहें तो कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन हो आयुर्वेदा के बारे में. अच्छा, टुडे इन हिस्ट्री, पहले एक गीत सुनते हैं फिर हिस्ट्री.

और शनाज भट फ्रॉम तंजानिया आपके बाद आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं म्यूजिक भास्कर पटेल फ्रॉम मैनचेस्टर आप भी सुन रहे हैं और मैनचेस्टर का सलाम तमाम लिसनर्स के लिए अब समिन यहाँ पर हैं मैं मुझे लगा कि राव होंगे वो इंडियन स्पाई मास्टर जिन्होंने रॉ शुरू की थी तो यासर कहते हैं ओ नो इट्स नॉट राव इट्स काओ कहते हैं ही वॉज अ पुलिस ही वॉज अ ब्यूरोक्रेट ही वॉज अ स्पाई मास्टर अ पुलिस ऑफिसर एंड इंटेलिजेंस

0: और रसिला कहती हैं मिलिट्री प्रोटेक्टिव ऑर्डर और मैंडेटरी प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं, रसिला एमपीओ कुछ और ही है जिसके तहत पुलिस अगर आपको पकड़ लेती है तो ये उनका अधिकार माना जाता है. आपने कहा मैनेजिंग पुलिस ऑपरेशंस, इट कुड हैव बीन बट नो, रितु गुप्ता. और साथ प्लीज आई हैव मैसेज नॉट कन्वेड टू इट वुड बी सलमा अहमद. ओके ठीक है. नहीं ये मैं सिर्फ आपके मैसेजेस पढ़कर ही सुनाती हूँ. और जतिंदर
1: जी यक्के पे यक्का भी नाइस गाना वा ब्रह्मचारी फिल्म सी ते शमी कपूर बच्चों को गड्डी च लाके गा रहे हैं. थैंक यू जी.
0: ओके समन ये जो एमपीओ है इसमें पब्लिक आएगा. ओके पब्लिक आएगा फिर हुक्म भी आता है इसमें. हुक्म को ऑर्डर हुक्म को ट्रांसलेट करने आपको मिलेगा कुछ ना कुछ जवाब.

निशात बेगम क्या जबरदस्त गाना सामिन पंजाबी में गा रही थी। और मैंने कहा कि इमरान खान की बहन अलीमा खान को हिरासत में लिया गया है और लाहौर पुलिस ने कहा इट्स अंडर एमपीओ दैट वी वर अरेस्टेड हर। तो एमपीओ है क्या? रसिला। बहुत अच्छे, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है रसिला शाह। सना काना नो। नीला शेथ वंडरफुल करेक्ट आंसर। सूरी जगदेव मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन गलत है। रितु बिल्कुल करेक्ट। रितु गुप्ता को भी मिल गया है, नीला शेथ को भी मिल गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम आपको बता दें समिन एमपीओ अगर कोई कहता है ना, आम तौर पे हर मुल्क में यही है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के आपने जनता को सुरक्षित रखना है। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत किसी को भी उठा लिया जाता है, किसी को भी गायब कर लिया जाता है और कहते हैं कि हमने तो पब्लिक ऑर्डर रखना था ताकि बदमनी ना फैले। तो एमपीओ इज मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये याद रखिएगा। और समिन आगे मैं आपको बताऊं कि लड़ाई अगर करनी है तो आप कहेंगे कि उम्र की भी सीमा है, 50 साल के बाद कोई मर्द भी एक दूसरे से नहीं भिड़ते, 60 साल के हो जाएं तो बैठे रहते, कोई कुछ कह भी दे तो चुप बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन दो मर्दों की लड़ाई हुई है, मैं उसके बारे में ज़रूर आपको बताना चाहूँगी और उनकी उम्र की उम्र भी बताऊँगी और कहाँ लड़ाई हुई और लड़ाई का अंजाम क्या हुआ वो थोड़ी देर के बाद। पहले ये सुनते हैं।

0: और अब इससे पहले कि मैं खबरों में जाऊं, समिन मैं कह रही थी कि लड़ाई, एक उम्र आती है कि आप लड़ना भी बंद ही कर देते हैं। चलिए एक पहले कॉल ले लेते हैं।
1: मैं फरखंदा शेख बोल रही हूँ। क्या गाना लगाया आज तो आपने, मेरा दिल ही जीत लिया, इतना खूबसूरत गाना है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह हाफिज।
0: जी फरखंदा शेख, ये मोहम्मद रफी साहब का काफी देर के बाद मैंने आपको सुनाया है। रेखा वालिया ने कल का लफ्ज भी दे दिया है। और समिन 82 साल का आदमी है, 82 ईयर ओल्ड आदमी है, ग्रीक है शायद। तो एक और भी आदमी है, वो 76 साल का, 76 ईयर ओल्ड, 82 6 76। दोनों साहिल पर हैं, ग्रीस के साहिल पर, बीच पर। तो समिन आप जानते हैं ना, सन लाउंजर होते हैं वो, जिनके ऊपर आप लेट कर आप फिर गर्मी का फ़ायदा उठाते हैं, करते हैं अपने आप को टैन, है ना, सन लाउंजर होता है। तो वो पब्लिक के लिए रखे होते हैं। वो कई बार ऐसा होता है कि दो दो शख्स जो होते हैं, दो बंदे एक ही लाउंज के लिए लपकते हैं। तो इस तरह से वो सन लाउंजर पर झगड़ा हो गया। 82 ईयर ओल्ड बुज़ुर्ग और 76 साल बुज़ुर्ग, दोनों में लड़ने लगे और एक दूसरे को गालियां, मुक्केबाजी हो रही है, टांगे इस्तेमाल हो रही हैं, और फिर दूसरे लोग भी शामिल हो गए लड़ाई में। इतनी ऊंची ऊंची चिल्लाने लगे लोग और केओस होने लगा। फिर वो जो बुज़ुर्ग थे 82 ईयर ओल्ड, समिन लड़ाई कर रहे थे लेकिन बेहोश होके गिर गए। तो लोगों ने आके CPR किया, उनके सीने को दबाया के वापस, और एम्बुलेंस बुलवा ली। एम्बुलेंस तो मिनटों में आ गई, लेकिन समिन एम्बुलेंस में ले जाने की ज़रूरत ही ना पड़ी, साहब ने साहिल पर ही दम तोड़ दिया। ये दोनों बुजुर्गों की लड़ाई में एक की जान चली गई।
2: East FM celebrating your favorite occasion. East FM, Kenya's premier Asian mix. All the great songs that